0: के गर्छ?
1: चल चल जान।
2: अम्मा अम्मा छोड छोड छोड।
1: लाग्मा खेली फेरि बच्चा देखिन कुकुर बिरालो जस्तै झगडा परेछ।
0: यसले हैन त मलाई पहिला
1: सौदा लगाएर भित्रिन। अन्त तँ चाहिँ के भएको?
2: ओए इसाको त मसँग अम्बो
0: के
2: अन्त भोलि ड्राइभ पिकनिक आउँदैनस्?
0: आउँदिन
2: जम्न
0: आउँदिन आफै जा
2: साच्चै के आउँदैनस्?